क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।

क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया, तेरा शुक्रिया शुक्रिया।

आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। बाइबल पढ़ो लोगों, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी

हालेलुया। यस प्रभु, आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, तेरे जैसा कोई नाम नहीं प्रभु, तेरे जैसा चंगा करने वाला कोई नाम नहीं। तो हमें जितना आजाद कर सकता है वैसा कोई नाम नहीं प्रभु, जो हमारे पीड़ा को ले सकता है वैसा कोई नाम नहीं प्रभु। हम मांगते धन्यवाद। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार।

0: शस्त्र हो गए बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। यस प्रभु, तो हमारा भरोसा केवल तेरे ऊपर है प्रभु। आंधिया बन के आया जिंदगी को फिका, कौन हमारा केवल हार है प्रभु? हमारे सारे पापों को मिटाने प्रभु, सारे बंधन को तोड़ने, तू रचने वाला, तू रखता है अपनी नजर हमारे ऊपर। हर बंधन को तूने तोड़ा है प्रभु, हर बुराई को हटा दिए, हर बुरी कल्पना गढ़ने वाली आत्मा को हम दूर करते प्रभु। यीशु के नाम से इस समय प्रभु, हमारे लोगों के जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से, हमारे देशों के जीवन से प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते सुबह प्रभु। हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद, स्तुति आराधना करने के लिए धन्यवाद। तूने हमें हमारा ताबा लिया, धन्यवाद। हम आज प्रार्थना करते, ऐसे कितनी बेटियां प्रभु आज दुखी पड़ी है, निराश में पड़ी है, बंधन में पड़ी है प्रभु, उन्हें अच्छी समझ दे, अच्छी बुद्धि दे प्रभु, हर बुरे सोच हटा दे, हर बुरे विचार हटा दे प्रभु। हर बेटी के जीवन में तू कार्य कर। कितनी बेटियां बांस ही दबी हुई है प्रभु, आज उनके लिए हम विनती प्रार्थना करते, उनका ताबा तू ले प्रभु, उनके विचार का ताबा तू ले, उनके स्वभाव का ताबा तू ले प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, आज एक मन होकर हम उन सारी बेटियों के लिए प्रार्थना करते, जिनकी बेटी, जिनकी इतनी बेटियां पीड़ित है, सालों साल बच्चे होने के लिए राह देख रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, तू बंद गर्भे को खोलने वाला परमेश्वर, मरी हुई चीजों को तू जिंदा करने वाला परमेश्वर है। 100 साल के बाद तूने सारा का गर्भ खोला। आज हमारे ऐसी कितनी बेटियां इंतजार कर रही है, आपसे विनती कर रहे, कितनी बार आंसू बहा रहे, आज उनके लिए मध्यस्थी करते प्रभु। उस बेटी के जीवन में तू कार्य कर प्रभु और आशीर्वाद कर। हम प्रार्थना करते, कितनी बेटियां शादी के लिए रुकी हुई है, हर बेटियों की शादी समय अनुसार होने के लिए मदद कर। हमारी बेटी एक पिंकी का शादी होने जा रहा है प्रभु, उसको भी मदद कर। पूनम की शादी प्रभु होने के लिए मदद कर। सारे रास्ते, सारे रुकावट आ रही है, सारे कई सार प्रश्न आ रहे हैं प्रभु, और सारे इस बेटी से दूर कर दे। उसको आशीर्वाद कर, उसको सहायता कर, उसको मदद कर प्रभु। तेरे लहू से डाब दिया, आज तूने उसको मेरे लिए यूज किया, से धन्यवाद करते। इसी तरह प्रभु उस बेटी के जीवन में कार्य कर। हमारा इस पे इंटरेस्ट था बड़ा रिश्ते में, कई बेटियां कई परिवार ऐसे है प्रभु, बिना बच्चे के, बिना शादी के, उनकी भी शादियां होने के लिए मदद कर। हम प्रार्थना करते मंजुमा के बेटी के लिए भी मांगते प्रभु, उस बेटी के जीवन में भी कार्य कर, उसको भी संतान होने के लिए मदद कर और आशीर्वाद कर। ऐसे हम प्रार्थना करते, ऐसे हजारों बेटियां पड़ी है प्रभु, उनके लिए मध्यस्थी करते। हर एक बेटी के जीवन में कार्य होने दे प्रभु। जितने बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते, कितनी लोग बीमार पड़े, कैंसर से पीड़ित थे, अलग अलग बीमारी से लोगों ने गचर कर रखा है प्रभु। आज हम उन अवस्था को आजाद होने का आत्मा मांगते। सेल्वी की भाई सेफरिन का ताबा तेरे हाथ में देते। वो बेटा पैरालाइज के शिकार हो चुका है, उसको आजाद करते प्रभु। एक बहन क्रिश्चियन करके है प्रभु, वो पीड़ित है प्रभु, आज हम उसको मिलने गए थे प्रभु, कितनी निराश है प्रभु, उस बेटी का इलाज होने दे, पूरी तरह से चंगा कर दे, उसके हालात को ठीक कर दे प्रभु। ऐसे हम घोषणा करते, हम हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें मौका दे, हमारे इस्तेमाल कर प्रभु, और होने दे हमारी प्रार्थना है, लोगों के जीवन में आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु, मेरे पति कथा तेरे हाथ में देते, उसके जीवन में कार्य कर, उसके अंदर की निराशपन का निकाल दे। जब कुछ कड़वे शब्द मैंने उसको कभी बोले है तो प्रभु हमें क्षमा कर। हर पति पत्नी के बीच में एकता आने दे, और हे दुरिया, हे दुष्ट बातें, शैतान आया है, हर रिश्तों को तोड़ने आया है प्रभु, लेकिन तू आया है प्रभु बहुत इसका जीवन देने के लिए, जीवन दान देने लेके आया प्रभु। हमारे मृत्यु से हमें विजय दिया प्रभु, बीमारी से विजय दिया प्रभु, निराशा से विजय दिया प्रभु। आज हम मांगते हैं हर बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, हर बुराई को तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर बीमारी आजाद हो चुकी है, कैंसर जा चुका है यीशु के नाम से। हम किशोर के माता पिता को भी तेरे हाथ में देते प्रभु, उनके भी जीवन में तूने कार्य कर दिया और बहुत ही जल्दी अच्छे हो चुके यीशु के नाम से, ऐसा हम उनके लिए घोषित करते प्रभु। सहायता कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ललित भाई का बेटा जो हॉस्पिटल में है प्रभु, उसको पूरी तरह से उसको चंगाई दे दी, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। ऐसे कितने लोग प्रभु पीड़ा में है, दुर्दशा में पड़े हैं, कई बच्चे नौकरी के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु, उनके आशीर्वाद कर। ये जवान पीढ़ी को तो बचाना प्रभु, बुराई से बचाना, व्यभिचार की आत्मा से बचाना, बुराई से बचाना प्रभु, झूठी आत्माओं से बचाना, झूठी आदतों से बचाना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। परिवार में तेरी शांति आने दे, एक दूसरे का आदर का आत्मा मांगते, एक दूसरे के ऊपर प्रेम का आत्मा मांगते प्रभु, ऐसे मांगते प्रभु। तू मदद कर, हर एक के जीवन में तू कार्य कर। हम दुनिया की बातें न देखते हुए प्रभु हमारा ध्यान तेरी ओर लगा दे प्रभु, तेरी क्रूस की ओर हम देखे प्रभु, तेरी तेरी इच्छा मालूम होते जाए प्रभु। इफिसियन चैप्टर कहता है मेरी इच्छा मालूम होते जाओ, नया बल प्राप्त करते जाओ, और जो मेरी इच्छा ऐसे होते हैं के लिए अपने आप को तैयार करो प्रभु। आज हम मांगते प्रभु सहायता कर, मदद कर प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु, हम धन्यवाद करते। निर्मला को भी तेरे हाथ में देते प्रभु, उस बेटी अपनी माँ को मिलने के लिए गई है प्रभु, उसका प्रवास अच्छे अच्छे हो, अपने परिवार से वह समय बिता पाए, उसकी माँ को ब्लेस करना प्रभु, आशीर्वाद करना, ऐसे में प्रार्थना करते प्रभु। और ऐसे भी जितने भी प्रभु एज वाइज हो गए, उन सभी को हम तेरे हाथ में देते, सभी का ताबा तू ले, सभी के जीवन में कार्य कर प्रभु, ऐसे में प्रार्थना करते प्रभु। सहायता कर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इस समय वचन की तरफ जा रहे, हमसे बातें कर प्रभु, आज तू ही हमें चलाने वाला, हमें मदद करने वाला और हमें सहायता करने वाला, हर चीजों से ऊपर तू परमेश्वर है प्रभु। हम मांगते प्रभु सहायता कर, मदद कर, और हमसे मदद कर प्रभु। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम पढ़ेंगे आज वचन है व्यवस्था विवरण का, व्यवस्था विवरण डिट्रोमी 29 का 29 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया, निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 29, डिट्रोमी 29 वर्स 29। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Anyway. गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यह के वंश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसीलिए कि हम इस व्यवस्था को सब बातें पूरी की जाए। आमीन हालेलुया। यह परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है, जैसे हम 28 वचन पढ़ते उसमें कहता है यहोवा ने कोप और जलजलाहट को बड़ा हो क्रोध करके उन्हें उनके देश से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। प्रभु ने गुप्त बातों जो परमेश्वर यह के वंश में है उसने प्रकट की गई सदा के लिए हमारे वंश और वंश में रहेगी। जैसे परमेश्वर ने अच्छी बातें अब्राहम के जीवन में प्रकट की गई, आज इधर प्रभु ने इसराइल के लोगों के जीवन में, आज हमारे सभी के जीवन में प्रभु ने अच्छी बातें प्रकट की गई है, हमेशा के लिए। कैसा? सदा के लिए, सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में भी रहेगी, हमारे देश में रहेगी, हमारे कलीसिया के लोगों में रहेगी। इस व्यवस्था को सब बातें पूरी की जाए, ऐसा आज का वचन है, सब बातें पूरी की जाए। परमेश्वर ने हमारे वंशों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारे परमेश्वर के राज्य के लिए जो बातें प्रकट की गई है, वो हमारे और आपके जीवन में पूरी होगी, ऐसा आज का वचन व्यवस्था इधर इसराइली लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। और उसी का वचन हम पढ़ेंगे एक भजन संगीता का, एक शे भजन सोम 131 वर्स 1 और 2, भजन संहिता का 121 का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 131 हालेलुया प्रभु। देखो, पहली तो बात प्रभु के था गुप्त, हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में गुप्त कुछ चीजें प्रकट की गई है और समय अनुसार पूरी हो गई, समय अनुसार ठहराई गई बातें पूरी करेगा प्रभु। आज कई बार हम लोग, हमारी चिंताओं, हमारे बुरे विचार, हम बहुत बुरा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए लिखी गई है वो कोई पूछ नहीं सकता है, नहीं कोई निकाल सकता है। एक सौ 131 उसमें पढ़ेंगे, 1 1 एंड 2। देखो, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें से काम नहीं रखता। नीचे मैंने अपने मन को शांत और चुपचाप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। देखो, यहाँ परमेश्वर दाऊद से बातें कर रहे हैं। दाऊद इधर कह रहा है, हे यहोवा, मेरा मन तो गर्व से और मेरी दृष्टि में घमंड भरी है। कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें बुरी घड़ी रहती है, और बुरी कल्पना के वजह से कई बार हम अपनी आशीष को खो जाते। लेकिन इधर परमेश्वर आज कह रहा है, दाविद को कह रहा है, इसीलिए जो जब गर्व आता है, घमंडी बातें, बुरी कल्पना आती है, तो उधर कोई भी काम हमारा सफल नहीं होता है, उलट बिगाड़ देता है। और इधर दूसरी बात परमेश्वर इधर कह रहा है दाविद को, निश्चय मैंने अपने, दाविद कह रहे हैं, मैं अपने मन को क्या किया, शांत किया, अपने मन को प्रभु के सामने लेकर गया और शांत किया और चुप कर दिया प्रभु के सामने, और चुप हो गया, जैसे एक दूध छुड़ाया लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे वो चुप रखकर वो अपने परमेश्वर के गोद में गया, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। वो अपने बच्चों के समान अपने परमेश्वर के पास गया और चुप रहा। आज कई बार हमें चुप रहने की जरूरत है, कई बार हम लोग बोलते जाते, और जो प्रभु को काम कर, प्रभु का काम प्रभु को करने दीजिए। हमारी कल्पना, हमें क्या अच्छा लगता है, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं कि कुछ बातें हमारे मन की हम गढ़ा रहे हैं। उसी में भजन संहिता 25 में 14 भी वचन पढ़ेंगे। इधर प्रभु दाविद को और आपको और हमें भी प्रभु चुप रहने के लिए कह रहा है, और शांत रखकर प्रभु के करीब जाने का समय है। इधर बकबक करना नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनने का समय है। और सम चैप्टर 25 वर्स 14, भजन संहिता 25 का उसका हम 14 वचन पढ़ेंगे। पच्चीस में 14 वचन देखो क्या कह रहे हैं। यहां के भेद को वही जानता है, उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा पर प्रकट करेगा। देखो दावी से प्रभु क्या कह रहा है, पहले तो चुप रहने के लिए कह रहा है और बोलता है इधर, यहोवा के भेद को कौन जानता है, जो उससे डरते हैं। परमेश्वर के भेद को वही जान सकते हैं जो परमेश्वर का भय है उनके अंदर, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं और वो अपनी वाचा उन लोगों के ऊपर प्रकट करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर वो परमेश्वर अपनी बातें प्रकट करता है। उसने अब्राहम के सामने क्यों बातें प्रकट की, क्योंकि उसने अब्राहम को मित्र कहा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर जो कहता था अब्राहम मानता भी था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, दाविद के अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए दाविद भय के साथ परमेश्वर की हर एक बात माना करता था। आज हमें और हमें परमेश्वर की भय को मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं उसकी उसके लिए सारी चीजें भलाई की उत्पन्न होती है, भलाई की उत्पन्न होती है। हर एक वचन करके हम प्रार्थना में जाते हैं। दानियल चैप्टर 2:28, इधर दानियल से भी प्रभु बात कर रहे हैं। दानियल 2:28 वचन पढ़ते हैं। देखो 2:28 वचन दानियल क्या कहते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। जो भेद दानियल ने देखो, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदे राजा का भी बताया अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न जो कुछ तू पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। देखो यहां भी परमेश्वर यही की बात कह रहा है उससे, भेद को प्रकट कर, भेद कौन प्रकट कर सकता है गुप्त भेद को, सिर्फ प्रभु। और उसके सामने वो प्रकट करता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का आदर करता है, उनके लिए उनके सामने प्रभु उसका भय प्रकट करता है। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, मैं परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। जो भेद हमारे सामने प्रकट कर सकता है वो तो स्वर्ग में है, हमारे जीवन का भेद कौन प्रकट कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर, जिन जिसके हमारे बारे में मालूम है, जो हमें जानता है, उसको हमारा भेद पता है। आज हम बहुत सारे मन को प्रश्न कर रहे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा कल क्या होगा, हमारा जीवन में क्या होगा, जिसने परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे जीवन का हर एक भेद उसको पता है, हर एक उसको पता है। आज हम मनुष्य हर बुरी बात लेकर अपने जीवन को नष्ट करने में पड़े हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो हमारा भेद जानता है, वो आपके और हमारा जीवन का भेद समझता है, परखता है। आज प्रभु यही आज हमसे कह रहा है और आपसे, क्योंकि प्रभु हमारे भेद को समझता है और वो समय अनुसार वो भेद हमारे सामने प्रकट करेगा। हमें पहले ही हम प्रभु का काम हमें नहीं करना है, प्रभु का काम चुपचाप रहने के लिए कह रहा है। दाविद को क्या कह रहा है? दाविद चुपचाप रे शांत होकर प्रभु के पर करीब गया। तब परमेश्वर ने उसके सामने उसके जीवन का प्रकट भेद प्रकट करवाया। आज आपका और मुझे प्रभु के सामने चुपचाप रहकर प्रभु के पास जाकर प्रभु हमारे जीवन का हर एक भेद प्रकट करेगा। आइए मां के बंद करते। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद। जैसे तूने दानियल से बातें की स्वप्नों के द्वारा, उस भेद स्वप्नों को समझाने का प्रकट प्रभु तेरे पास था। तूने दानियल को स्वप्न का अर्थ बताया, तूने दाविद को चुप रहकर उसके जीवन का प्रकट बताया प्रभु। इसराइलियों को लेके तूने गुप्त बातों का प्रकट दर्शाया प्रभु। तेरा वचन कहता है जो मेरा भय मानते हैं, जो शांत रखकर मेरे करीब आते हैं, उनको मैं अपना भेद प्रकट करूंगा। प्रभु हमें मदद कर और हमें क्षमा कर। इन दिनों में जब हमने कोई जल्दबाजी में गलत तेरे विरुद्ध जाकर कुछ अपने मन को प्रभु बुरी सोच लेकर हम अपने आप से प्रभु आपसे दूर गए, तो आज हम क्षमा मांगते। हमें तेरे करीब लेकर आ प्रभु। हमें चुपचाप रहकर तेरी बातों को याद कर तेरे क्रूस की ओर हम देखे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते के समय हमारे हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में देते, हर एक की जीवन का ताबा तेरे हाथ में देते। सभी को तू चलाना प्रभु, हर हमें यूज कर प्रभु, और मदद कर और तेरे करीब जाने में हमारी मदद कर प्रभु। ऐसे में प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।
1: प्रेज लॉर्ड सुमिता।
0: प्रेज द लॉर्ड।
1: या थैंक यू, गुड मैसेज, गुड सिंगिंग। गॉड ब्लेस यू यू एंड
0: यू
1: योर
0: टू,
1: फैमिली। सी
0: यू
1: यू
0: टू।
1: टुमारो सेम
0: ओके
1: टाइम।
0: बाय।
1: या थैंक
0: गॉड
1: यू,
0: ब्लेस यू।
1: थैंक यू
0: बाय
1: फॉर
0: बाय
1: दिस। या
0: बाय बाय
1: गुड नाइट, बाय बाय।
0: बाय बाय।
1: சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம் ஆண்டவரே, நன்றியப்பா நன்றியப்பா, நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கத்தாவே, இந்த நேரத்துக்காய் நன்றியப்பா, சுமிதாவுக்காய் கத்தாவே, நாங்கள் உங்களை நன்றியோடு சூத்தரிக்கிறோம், சோத்திரம் துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கத்தாவே, நீங்க நல்லவர், வல்லவரப்பா, நீங்க போதுமானவர், தகப்பனே தெரிந்து கொண்டவரப்பா. இந்த நேரம் வரைக்கும் ஆண்டவரே கத்தாவே, இயேசுவே ஆண்டவரையாம், ஹிந்தி மொழியிலும் கூட கத்தாவே அருமையான பாடல்களை பாடி கத்தாவே ஆண்டவரே நாமத்தை மகிமைப்படுத்த துதிக்க அருமையான மகளுக்கு நீங்க கொடுத்த நல்ல தருணங்களுக்காய் சோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா. அப்படியா ஸ்காய்ப்ரம் சூழியங்களோட கத்தாவே மட்டுமா நீங்க கூட இருந்தப்பா தாப்பனே நடத்தி வர நல்ல தயவுகளுக்கா ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் கத்தரை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துறோம். தேவாதி தேவனே, உங்களை ஏத்துறமையாம், ராஜாதி ராஜாவானவரே, சர்வ வல்லவரே அப்பா, இறக்க நிறைந்தவரே, மனதுருக்க நிறைந்தவரே, மகிமை நிறைந்தவரே, கிருபை நிறைந்தவரே அப்பா. நீங்கள் மாறாதவர் மறவாதவர் இயேசுவே, தொடர்ந்து மங்களே ராத்திரி ஒளியில் எங்க வழி நடத்துங்கப்பா, ஆசீர்வதிங்கப்பா இயேசப்பா. உங்களுடைய பாத்துல இப்ப கொடுக்கிறோம், நன்றி சொல்லுறோம் ஐயா, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. எங்களை அழைத்து தாப்பனுக்கு நாங்கள் துதியானமாய் மேலாத்தை நாங்கள் செலுத்துறோம். பரிசு தாவியானவருக்கு துதியானமாய் மேலாம் செலுத்துறோம். வல்லவரே துதியானமாய் மேலாம் செலுத்துறோம். நல்லவரே துதியானமாய் மேலாம் செலுத்துறோம். பரிசுத்தரே துதியானமாய் மேலாமக்கே நாங்கள் செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. நன்றியப்பா நன்றியப்பா, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. விடைவிடாது நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்களை தெய்வம் பெரியவரையாப்பா, நீங்கள் எங்களை ரட்சிக்க வல்லமுள்ளவரே, திராணி உள்ளவரே அப்பா இயேசுவே. நன்றி என்று சொல்லுகிறோம், நன்றி என்று சொல்லுகிறோம், நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் ஐயா. நன்றி பலிகள் துதி பலிகள் சோத்திர பலிகளை அப்பா உங்களொருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துறோம் ஆண்டவருக்கு. நன்றி ஆவியானவரே, நன்றி அப்பா, சோத்திரம் சோத்திரம். பெரிய காரியங்கள் செய்கிற தேவன் ஆண்டவரையா, நாங்கள் நினைப்பதற்கும் ஜபிப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நீங்கள் அதிகமாய் கிரிய செய்கிற கர்த்தரா ஆயிருக்கிறீங்க இயேசுவே. நன்றி சொல்லுறோம், நன்றி சொல்லுறோம் ஆவியானவரே. உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி அற்புதரே, உமக்கு நன்றி இயேசுவே. அதிசயங்கள் செய்கிற கர்த்தரே உமக்கு நன்றி அப்பா இயேசு ராஜா. நாமத்தை உயர்த்துறோம், உங்கள் நாமத்தை உயர்த்துறோம் ஐயா கத்தாவே, உங்கள் நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஐயா, உங்கள் நாமத்தை பிரஸ்தாப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எந்த ஸ்தானத்தில் நான் வந்து உங்களோடு கூட உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்ன தேவன் பெரியவரையா பெரியவரையா பெரியவரையா இயேசுவே உமக்கு நன்றி, இயேசுவே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். நன்றி உள்ள மனதோடு கத்திர நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஐயா, சோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம் இயேசுவே, சோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம் ஐயா, ஆவியானவரே சோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம் ஐயா, அற்புதமானவரே சோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம் ஐயா, வல்லமுள்ளவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம், நன்றி சொல்லுகிறோம். வழி நடத்துகிற தேவனே உமக்கு நன்றி அப்பா, சோத்திரம் ஆண்டவரையா, நன்றி ஆண்டவரையா. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து வாழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா, இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா, உங்கரம் நீட்டி